सौ को करीब कैश बैक तथा छह सौ गिफ्ट वॉशिंग मशीन में छह के जी ऑटोमेटिक डिश वॉशर में वॉशिंग टैबलेट एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन स्कैनिंग ओवन में प्रेशर कुकर अधिकतम मात्र भाई पुग्छ समझ ई एम आई मार्फत खरीद करना।

पश्चिम बड़ी उसे को समझना माया को जस्वी बड़ी उसे को समझना न पाऊंगी माया को आई सकना माया मिठो खुर्दा माते खई कसो माया खई कसो

की बड़ी उसे को समझना माया को जस्की बड़ी उसे को समझना माया को आईरानी सकना माया में छोड़ा माते खड़ी कसो माया दिखाया।

0: यूपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बच गई हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

कसी बड़ी रुवाउँछ उसै को सम्झना न पाउने मायाको हैरानी सपना जस्ती बड़ी रुवाउँछ उसै को सम्झना न पाउने मायाको हैरानी सपना माया मिठो छुट्दा

ने लै सजीवा हो सने निकाल सच्चे ही मन तुम कहिरा कहिरा है जगा सने सजीले हो सहने लगे बहारो अच्छे मन कहिरा भैरव सहारो खिलला।